आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल होगी, हालांकि पहले बुलाए जबकि वो सही और सालिम थे।

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
1: या हबीबी, या मुहम्मद, या नबी।
0: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

0: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers. Phone 09382732 65.
1: टूपी मेडिकल केयर सेंटर। टूपी मेडिकल केयर सेंटर के वा डॉक्टर शहबाज खान का मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम आस्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम है ऑर्थोपेडिक द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरे डॉक्टर मेमुना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर द नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरे डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ते और इतवार पोरस द शहर नौ बजो नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरे डॉक्टर शहजाद फिजियोथेरेपिस्ट द जुमे हफ्ते और इतवार पोरस माजीगर सलूर बजो नवाखला तरमाखाम अतो बजो पोरे और दी सरसरा डॉक्टर इमाद जमान साहब शुगर स्पेशलिस्ट वा द जुमेरात पोरस शहर द नौ बजो नवाखला तरमाजीगर सलूर बजो पूरे ओपीडी कवि 24 घंटे लेबर रूम मेडिकल स्टोर अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी जनरेटर सहूलत और पेशेंट मेडिकल वार्ड्स नो पता या साथे टूपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा मेले लाल टूपी मोबाइल नंबर 0335-666-2878 द्वेम नंबर दे 0336-444-5888।
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.